चरण बोलते हैं। इस तरह से एक आत्मशक्ति में अलग अलग नाम रूप में लोगों का जन्म हुआ है, मृत्यु होता है, ये चलता चला आ रहा।

गीत बनाए ना क्या? सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, बिना नाम रूप का जो परमात्मा नाम या बिना नाम रूप का जो सागर है उसमें इस नाम और इस रूप का एक लहर उठी। और तुझे मुबारक हो, जन्मदिन के दिन तुम ये याद करो, तुम सिर्फ एक तरंग नहीं हो, तुम सागर ही हो। ये आत्मज्ञान तुम्हें मिल जाए, ये बधाई देते हैं अपन लोग, नहीं आज तक दिन में हम लोग यही बधाई देते क्या? सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियां आत्मज्ञान की। तुझको है अनंत में जाके मिल जाना, तू है सुंदर फूल इस संसार के, अपनी सुंदरता को याद दिलाओ सबको। क्यों हम लोग हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू गाते रहते हैं? अंग्रेजी में हैप्पी बर्थडे गा गा के केक काट रहे थे, मैंने कहा नहीं, आत्मज्ञान वाला जन्मदिन का गीत गाओ। जयंती कहा गया हमारे यहाँ, जन्मदिन को कहते हैं जयंती, जहां जय भी समाप्त हुआ। जय का क्या है? जहां लड़ाई होता दो होता वहीं तो जय होता है, जहां दो ही समाप्त हुआ वहां जय भी समाप्त हुआ। जीत भी जीत हार दो होने से होता है, हमारी एकता का अनुभव होने से जीत का क्या महत्व? किससे हम जीत रहे? अपने आप से। जन्म एक संघर्ष है, जन्म से पूर्व भी संघर्ष है, एक शरीर मिलना कोई आसान नहीं है। कितनी आत्माएं दौड़ लगाती है तो उनमें से एक आत्मा को मौका मिलता है शरीर में आने का। और मरने पर संघर्ष ही करते रहेंगे, फिर मरने के बाद भी संघर्ष? नहीं,

एक ही तो सागर है, लगता है सागर में एक लहर पीछे की ओर सरक रहा है, दूसरी लहर आगे बढ़ रही है, दोनों में संघर्ष है। ऐसा नहीं।

0: एक ही आत्मा अलग अलग नाम अलग अलग रूप में प्रकट होता है, फिर विलीन होता है, प्रकट होता है, विलीन होता है। इस खुशी से जनक गदगद हो उठे, आश्चर्यचकित हो उठे। आज इतना
1: नमस्कार आदरणीय श्रोता, आजको लागि द आर्ट अफ लिभिङको संयोजनमा सञ्चालित यो कार्यक्रम अमृतधारा यति नै।

0: गीता ज्ञान,
1: गीता ज्ञान संस्कृत भाषा रूपांतरण का साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। कार्यक्रम समर्पण। प्रत्येक शुक्रबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुमधुर रसमय भजन का साथ में अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। इस लोकप्रिय प्रसारण संस्था FM अध्यात्म ज्योति मार्फत व्यवसाय वस्तु एवं सेवाको विज्ञापन गर्न इच्छुक महानुभाव सम्पर्क हेतु टेलिफोन नम्बर 98 41 28 98 41 28 90

0: FM अध्यात्म ज्योति शांति रेडियो
1: यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम मधुरम। यस कार्यक्रमका प्रायोजक
2: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नम्बर 13, न्यू रोड, काठमाडौँ। राधा कृष्ण ज्वेलर्स।

0: यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम मधुरम। यस कार्यक्रमका प्रायोजक
1: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नम्बर 13, न्यू रोड, काठमाडौँ। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
0: अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: FM अध्यात्म ज्योति शांति रेडियो।
1: यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम मधुरम्। यस कार्यक्रमका प्रायोजक
2: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नम्बर 13, न्यू रोड, काठमाडौँ। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: अहिले यहाँ कार्यक्रम मधुरम।

पृथक्केशै निषूदनं। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। सन्यास और त्याग सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अलग हैं। कैसे अलग हैं, यही अर्जुन जानना चाहता है। युद्ध को लड़ने से मना कर देने के कारण ये श्रृंखला शुरू हुई थी। अर्जुन की दुविधा थी और कृष्ण के हल थे। अर्जुन की दुविधा तो दूर हो रही है, लेकिन उसकी बढ़ती जिज्ञासा में अभी भी प्रश्न बाकी हैं। अर्जुन सन्यास और त्याग के फर्क को अलग अलग करके जानना चाहता है।

कितने ही बुद्धिमान लोग अपने काम करने वाले कर्मों को छोड़ने को, यानी कि सांसारिक जीवन में नौकरी करना, विवाह करना, धन कमाना आदि के त्याग को ही संन्यास समझते हैं। कुछ दूसरे बुद्धिमान लोग सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग मानते हैं। कर्मों के फल के त्याग से यहां मतलब हुआ कि इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं का त्याग। बुद्धिमानों में दो मान्यता होती है दोस्तों, एक के अनुसार अपने सांसारिक जीवन को त्याग देना ही संन्यास है, और दूसरी मान्यता कहती है कि अपना सब कुछ करते हुए अपने कर्मों के फल को त्याग देना ही त्याग है।

कई बड़े बड़े विद्वान ऐसा मानते हैं कि कर्म खुद ही दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है। मतलब कोई भी कैसा भी कर्म हो तो उसमें दोष तो होगा ही, इसलिए हर कर्म त्याग देने के ही लायक है। ऐसी हालत में तो फिर संन्यास ही एक उपाय बचता है। जबकि कई दूसरे विद्वान का ऐसा कहना है कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्म त्यागने योग्य नहीं है। यज्ञ, दान और तप से तो परमात्मा का रास्ता खुलता है, इन्हीं को त्याग देंगे तो भगवान तक कैसे पहुंचेंगे। इसीलिए कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि यह कर्म त्यागने लायक नहीं।

त्याग और सन्यास का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो एक ही है। इसीलिए अर्जुन अपनी शंका दूर करने के लिए दोनों में भेद बताने को कहता है। कृष्ण अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत के बारे में बताते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का कहा गया है। यज्ञ और तप की तरह त्याग के भी तीन भेद होते हैं। इन तीन प्रकारों को सुन कि त्याग क्या है, तभी तू इसे अच्छी तरह से समझ सकेगा।

कि यज्ञ दान और तप जैसे कर्म त्यागने नहीं चाहिए, बल्कि ये तो करने के योग्य आवश्यक कर्तव्य हैं। उस पुरुष को बुद्धिमान माना जाता है जो इस ज्ञान को पा चुका है कि उसको अपने सारे कर्म बिना फल और आसक्ति के करने हैं, और ऐसे बुद्धिमान पुरुष खुद को पवित्र करने के लिए ही यज्ञ दान और तप करते हैं। तो ऐसे में इनका त्याग कैसे किया जा सकता है? अलग विद्वानों के अलग मतों में से कृष्ण सही बात को बताते हुए कहते हैं, यज्ञ दान और तप जैसे कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए।

यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का तो त्याग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तीनों पवित्र करने के लिए होते हैं। लेकिन कृष्ण साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम जो भी काम करते हैं उनके फलों और आसक्ति का त्याग अवश्य कर देना चाहिए। जब त्याग करने की बात आई तो कृष्ण ने कर्म त्यागने की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि उसके फल और उससे पैदा होने वाली आसक्ति को त्यागना है। कर्म योग पर कृष्ण का विशेष बल रहा है दोस्तों, वो ही हम सबके लिए संभव भी है। कर्म योग ही एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने जीवन को जीते जीते परमात्मा के पास आ सकते हैं।

कुछ विद्वानों का ऐसा कहना था कि हर कर्म में कोई न कोई बंधन होता है, इसलिए सारे कर्म ही त्याग दो। श्री कृष्ण ऐसा नहीं मानते। शास्त्र जिसे ठीक ठहराते हैं, जो निर्धारित हैं, जैसे कि यज्ञ, ऐसे नियत कर्मों का त्याग करना उचित नहीं। जो कर्म निषिद्ध हैं या काम्य कर्म जो फल के लिए किए जाते हैं, उनको त्याग देना चाहिए, लेकिन नियत कर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए। जब किसी मोह के चलते हुए हम अपने नियत कर्मों का त्याग करते हैं, तो ऐसे त्याग को तामस त्याग कहा जाता है। इस दुनिया की किसी आसक्ति में फंसकर अगर आप अपने कर्तव्य को, कर्म को छोड़ देते हैं, तो वो तामस त्याग मान

अपने कर्म करना, कर्तव्य निभाना आसान नहीं होता। इससे हमारे शरीर को कष्ट भी होता है। जब कर्म करेंगे तो कोई ना कोई परेशानी तो होगी ही। अब अगर ऐसा मान लेंगे कि जो कोई कर्म है वो सब दुख रूप ही है, और ऐसा समझकर यदि शारीरिक परेशानी के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देंगे तो ये राजस त्याग माना जाएगा। ऐसे त्याग का फल कभी भी नहीं मिलता। वैसे जब भी कोई त्याग किया जाता है तो उसका फल परम शांति होती है। कभी कुछ त्याग करके देखिएगा, आप स्वयं ही समझ जाएंगे दोस्तों। लेकिन शारीरिक परेशानी के चलते अगर आपने अपने कर्मों का त्याग किया तो उसका कुछ भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो राजस त्याग है। कार्यमित्ये

शास्त्रों में कहे गए कर्म को ही निर्धारित कर्म या नियत कर्म माना जाता है। ऐसे कर्म को करना ही कर्तव्य होता है। कर्म को कर्तव्य समझ करने के भाव से उसके आसक्ति और फल का त्याग सात्विक त्याग माना जाता है। सात्विक त्याग में एक खास बात है और इसीलिए ये तामसिक और राजसिक कर्मों से बिल्कुल अलग है। इसमें कर्मों का त्याग नहीं बल्कि कर्मों से होने वाले फल और उसकी आसक्ति का त्याग है। यही वो त्याग है जिससे कर्म करने वाले की शुद्धि होती है, क्योंकि ऐसा मनुष्य जो कर्म को कर्तव्य मान उसमें लिप्त नहीं होता, उसके फल से बंधता नहीं, उसकी आसक्ति में फंसता नहीं, तो इससे उसका अंतःकरण पवित्र होता है। इसलिए सात्विक त्याग श्रेष्ठ है।

या दोस्तों, जो कर्म शास्त्र ने ओके कर दिए हैं उन्हें नियत कर्म कहते हैं या फिर कुशल कर्म। लेकिन जो कर्म शास्त्र के विरुद्ध हैं वो कर्म कल्याणकारी नहीं होते, उससे कल्याण यानी कि किसी का भला नहीं होता। ऐसे कर्मों को अकुशल कर्म कहा जाता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा मनुष्य जो अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। करना तो सिर्फ कुशल कर्म ही है दोस्तों, क्योंकि अकुशल कर्म से कभी भला नहीं होगा, लेकिन साथ में ही अकुशल से द्वेष भी नहीं करना है और कुशल कर्म के फल में भी नहीं फंसना। यही बात कृष्ण कह रहे हैं। नहि देह भृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागित्यभिधीयते। जो भी शरीरधारी हैं, यानी कि जिस भी मनुष्य की देह है, उसके द्वारा कर्मों का त्याग संभव ही नहीं। आपके कर्म, आपके संस्कार आपके साथ बंधे होते हैं। जब आप एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में जाते हैं तो ये संस्कार भी आपके साथ आते हैं। तो चाहे शरीर इस जन्म का हो या अगले जन्म का या उससे भी अगले जन्म का, जब तक शरीर रहेगा ऐसा संभव ही नहीं कि आप अपने कर्मों का त्याग कर दें। जो कर्म फल का त्याग कर सकता है बस वो ही त्याग है, बाकी कुछ नहीं। त्यागी सिर्फ उसी को कहा जाएगा जो अपने कर्मों के बंधन में बंधता नहीं।

जो सकाम कर्म करते हैं उनके कर्मों का फल उन्हें मिलता ही है, अच्छा बुरा या फिर मिला हुआ। ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य मिलता है। लेकिन पूर्ण सन्यासी सबसे बड़ा त्यागी है, वो ही हो सकता है जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया है। कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता, और जब ऐसा होता है तो इसका अर्थ है कि वो मनुष्य जन्म के फेरे से बच गया है, उसी को परम धाम मिलेगा और इसी को ही शुद्ध सन्यास कहते हैं। गेरुए वस्त्र पहनकर अगर दुनिया की वस्तुओं में लगाव है ना दोस्तों, तो वो सन्यास नहीं माना जाता और ना ही त्याग माना जाता है।

अविद्या की वजह से हम अपने अंदर की आत्मा को नहीं देख सकते, अपने अंदर के कृष्ण को नहीं देख पाते, बस कर्म किए चले जाते हैं और उन कर्मों के बंधन में फंसते चले जाते हैं। लेकिन सिद्धि तो तभी प्राप्त होती है जब आप कर्मों की समाप्ति कर सकें। लेकिन साथ में कृष्ण ये भी कहते हैं कि जब तक शरीर है तब तक कर्मों को त्यागना संभव नहीं। इसी उलझन को दूर करने के लिए कृष्ण संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए पांच उपाय बता रहे हैं, और ये पांच उपाय सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, वही कृष्ण बता रहे हैं।

पांच उपाय जो सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं उन्हें बताते हुए कृष्ण कहते हैं, पहला है अधिष्ठान, यानी कि करने वाले का शरीर, जहां इच्छा, द्वेष, सुख और ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। दूसरा है कर्ता, मतलब हमारा मन। उसके बाद करण, जिन इंद्रियों और साधनों द्वारा कर्म किए जाते हैं वो। तीसरा है अलग अलग चेष्टाएं, जैसे कि सांस लेना और इस तरह की दूसरी वायु से जुड़ी क्रियाएं या दूसरे काम। चौथा है आधार, यानी के साधन, जिन इच्छाओं के साथ साधन जुड़ जाते हैं वहां वो काम पूरे हो जाते हैं। और पांचवा है दैव। ये पांच वो उपाय हैं जिनसे हम अपने कर्मों की सिद्धि कर सकते हैं। कर्मों की सिद्धि यानी कि अपने कर्मों को शास्त्र अनुसार कर सकते हैं।

अधिष्ठान यानी शरीर, कर्ता यानी मन, इंद्रियां, चेष्टाएं और पांचवा है देह। कोई भी मनुष्य जो भी कोई कर्म करता है वो इन्हीं पांच कारणों से करता है। वो कर्म या तो शास्त्रानुकूल होते हैं अथवा विपरीत होते हैं, लेकिन होते इन्हीं पांच कारणों से हैं। अपने मन, वाणी और शरीर से हम इन पांच कारणों का प्रयोग करते हैं और उससे या तो वो कर्म होते हैं जिनकी शास्त्र अनुमति देते हैं या उसके विपरीत कर्म होते हैं। अगर आपने अपने कर्मों को सिद्ध करना है दोस्तों, तो यह जानना बहुत जरूरी है कि कर्म कैसे किए जाएं, और यही बात कृष्ण समझा रहे हैं।

सारे कर्म पांच कारणों की वजह से होते हैं, लेकिन वो पुरुष जिनमें बुद्धि कम है या ज्ञान ज्यादा है, वो ऐसा मानते हैं कि कर्ता आत्मा है, तो वो गलत समझते हैं। आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है, उसे आप कर्ता नहीं मान सकते। जो बार बार जन्म लेता है, अपने कर्मों में फंसा रहता है और हर बार इस दुनिया में आके और भी ज्यादा अज्ञानी हो जाता है, उसे दुर्बुद्धि कहते हैं। ऐसा मनुष्य सब कुछ देखता हुआ भी नहीं देखता, इसीलिए वो आत्मा को कर्ता समझता है। जो करता है भगवान करता है, ऐसा कहने वाले अपने कर्मों से पीछा छुड़ाते हैं। ये ठीक नहीं। आत्मा कर्मों में लिप्त नहीं होती। बताए गए पांच कारणों से ही हमारे कर्म होते हैं।

0: ये सोचना कि सब कुछ हम ही करते हैं यह गलत है। आप कर्ता नहीं हैं। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं कर्ता हूं ऐसा भाव नहीं आता वो ही ज्ञानी होता है, बाकी पुरुष नहीं। जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, कर्म और उसके पदार्थों में नहीं बंधती, वो पुरुष ज्ञानी होता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है, क्योंकि वो जीने मरने से मुक्त हो जाता है। कृष्ण ऐसा कई बार कह चुके हैं, उसी को दोहराते हुए वो समझा रहे हैं कि कर्म करना है लेकिन उसके फल में इच्छा नहीं रखनी। फल में आसक्ति ही वो बंधन है जिससे सबको छूटना है, और तभी कर्मों की सिद्धि संभव होगी।
1: आदरणीय श्रोता, यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम श्रीमद् भागवत गीता गीता ज्ञान। अब एकैछिन समयतर्फ ध्यान दिउँ। यस बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा बिहानको 8:30 भएको छ र अब एकैछिन व्यावसायिक सन्देशहरू।

ज्ञाता उसे कहते हैं जिसे ज्ञात होता है, यानी कि जानने वाला, जिसके द्वारा जाना जाए वो ज्ञान कहलाता है, और जिसे जाना जाता है उसे ज्ञेय कहते हैं, यानी कि जानने में आने वाली वस्तु। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीनों कर्म प्रेरणा है, अर्थात इनसे ही कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। अब कृष्ण कर्म संग्रह के बारे में बता रहे हैं। कर्म करने वाले का नाम होता है कर्ता। जिन साधनों से कर्म किया जाए उनको कहते हैं करण, और कुछ भी करने का नाम होता है क्रिया। ये तीनों कर्म संग्रह हैं। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की प्रेरणा से हम कर्म करते हैं, उसके बाद कर्ता, करण और क्रिया से हमारे सारे कर्म इकट्ठे होते हैं।

जो शास्त्र गुणों की संख्या की बात करते हैं उनमें ज्ञान, कर्म और कर्ता इन गुणों के तीन तीन प्रकार कहे गए हैं। ये तीनों प्रकार ही अब कृष्ण बता रहे हैं। सबसे पहले ज्ञान के प्रकार बताए जा रहे हैं और ज्ञान में सबसे पहले है सात्विक ज्ञान, वो ज्ञान जिसके बाद कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये ज्ञान की सबसे परिपक्व, सबसे मैच्योर्ड अवस्था है। सात्विक ज्ञान से गुणों का अंत हो जाता है। कौन से गुण? वो गुण जो हमारे कर्म के कर्ता होते हैं। यही वो ज्ञान जिससे मनुष्य सब में, चाहे वो जीव हो या अजीव, हर किसी में एक अविनाशी परमात्मा को ही देखता है।

ज्ञान के अलग अलग प्रकार समझाते हुए कृष्ण राजसिक ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, जिस ज्ञान से मनुष्य बाकी सबको अलग अलग देखता है, अर्थात वो अपने को दूसरों से अलग समझता है, क्योंकि उसका शरीर अलग है तो उसकी आत्मा भी अलग है। जो ऐसा सोचता है वो ज्ञान राजसिक है। हम सब में उसी परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में विद्यमान।

जिस ज्ञान से पुरुष ये समझता है कि जो भी है उसका शरीर है और कुछ भी नहीं, वो सबसे बुरा ज्ञान है। जो ये समझता है कि ये आत्मा या शरीर बस इतना ही है, इससे परे कुछ भी नहीं, वो ज्ञान सबसे बुरा और तामस यानी कि तामसिक माना गया है। जिसमें ज्ञान है वो हर किसी में परमात्मा देखता है। ऐसे ज्ञान से ही पता चलता है कि सब कुछ ब्रह्म है, चल अचल सब कुछ ब्रह्म से ही आया है। लेकिन जिसका ज्ञान उस मनुष्य को ब्रह्म का आभास नहीं कराता, वो ज्ञान किसी काम का नहीं, तामस है वो। ऐसा ज्ञान युक्ति रहित और तत्वार्थ से भी परे होता है, जिसमें ना युक्ति होती है और ना ही कोई

अब कृष्ण कर्म के अलग अलग प्रकार बता रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। कर्म शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए और उसको करने वाले में यानी कि कर्ता में अभिमान नहीं होना चाहिए। कर्म को करने वाले आपके गुण होते हैं, आप नहीं। मैंने ये किया है, इस अभिमान से जो दूर होता है उसके द्वारा किया गया शास्त्रानुसार कर्म ही सात्विक कहलाता है।

मान लीजिए कि कर्म शास्त्र के अनुसार है, नियत है और निर्धारित भी है, जैसा कि कृष्ण कहते हैं, लेकिन उसके करने वाले में अहंकार है और ये कर्म भोगों की चाह के लिए किया जा रहा है, तो ऐसा कर्म राजसिक माना जाता है। कर्म तो ये पुरुष भी वो ही कर रहा है जो सात्विक कर्म करने वाले ने किया, लेकिन इस कर्म को करने में अहंकार आ गया। करने के पीछे उद्देश्य भोगों की चाह है, फल की इच्छा है, इसीलिए यह कर्म सात्विक नहीं माना जाएगा। चाहे इस कर्म में कितना ही परिश्रम क्यों न किया गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी इसको राजसिक ही माना जाएगा।

बिना सोचे समझे जो कर्म किया जाता है उसका क्या? जिस कर्म को करते हुए उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचा जाता, जिस कर्म में यह नहीं सोचा जाता कि कितनी हिंसा होगी और क्या उस कर्म को करने में कर्ता का सामर्थ्य भी है, ऐसे कर्म को तामसिक कहा जाता है। तामसिक कर्म अज्ञान से शुरू होता है। सोच और समझ का जिन कर्मों में एकदम अभाव होता है वो कर्म तामसिक माना जाता है। तमोगुण से जो कर्म होते हैं वो तामसिक कर्म होते हैं। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब आप कुछ भी करें तो पहले सोचिएगा कि आपका कर्म कौन सी श्रेणी में आता है।

कृष्ण कर्ता के रूपों को समझा रहे हैं। कर्ता यानी कि करने वाला, सबसे पहले सात्विक कर्ता, जो कर्ता संग रहित है अर्थात आसक्ति से रहित है, जो कर्म करते हुए घमंड में बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, वो कर्ता जिसमें धैर्य भी है और उत्साह भी, ऐसा कर्ता सात्विक माना जाता है। सात्विक कर्ता काम के पूरा होने पर ना तो खुश होता है और ना ही उदास होता है। ऐसे कर्ता के गुण सात्विक होते हैं दोस्तों, क्योंकि योगी की परिभाषा भी तो यही है ना, ना खुश और ना ही दुखी। सात्विक कर्ता बस अपने कर्म को कर्तव्य की तरह करता है, बिना डींगे हांके और बिना खुश

0: शोचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः।
1: जिस कर्ता में आसक्ति है यानी कि मोह है और वो कर्म करते हुए उसके फल को चाहता है वो राजसिक कर्ता माना जाता है। राजसिक कर्ता की पहचान होती है उसका लोभ। वो सब कुछ लालच में आके करता है। दूसरों को कष्ट देने में उसे परेशानी नहीं होती। जो न अंदर से ही शुद्ध होता है और ना ही बाहर से, जो बहुत ज्यादा खुश होता है या बहुत ज्यादा दुख में रहता है वो राजसिक कहलाता है। जब मोह में आके किसी लालच यानी कि कर्म के फल के लिए कर्म किया जाता है, जहां दूसरे की परेशानी को न सोच के बस अपना काम निकाला जाता है, तो या तो खुशी होती है या दुख, और ऐसा करने वाले को ही राजसिक कर्ता कहा जाता है।

0: उलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते।
1: अब कृष्ण समझा रहे हैं तामसिक कर्ता को। जैसा कि नाम से समझ में आता है, तामसिक कर्ता यानी कि नाश करने वाला। जो मनुष्य काम के लिए अयुक्त है, मतलब कि ठीक नहीं है, जिसमें शिक्षा की कमी है, जो घमंडी और धूर्त है, वो ही तामसिक कर्ता माना जाता है। तामसिक कर्ता दूसरों की जीविका यानी लाइवलीहुड का नाश करने वाला होता है दोस्तों। ऐसा कर्ता शोक करने वाला, एक नंबर का आलसी और दीर्घ सूत्री होता है। दीर्घ सूत्री उसे कहते हैं जो आज की बात को कल पे टालता है और बस टालता ही जाता है। खुद को देखिए, अपने लोगों को और दोस्तों को देखिए और सोचिए कि आप कौन से कर्ता हैं।

ज्ञान, कर्म और कर्ता के भेद बताने के बाद अब कृष्ण बुद्धि और धृति के गुणों के अनुसार उनके तीन प्रकार के भेद बता रहे हैं। हमारे चित्त में बुद्धि भी होती है और धृति भी। बुद्धि तो आप जानते ही हैं, जिससे कि आप लोग सोचते हैं, समझ को ग्रहण करते हैं, और धृति यानी के धारण करने की शक्ति, खुद को रोकने की शक्ति। बुद्धि और धृति में बड़ा गहरा संबंध है। जब आप खुद को रोक सकेंगे, अपने पर नियंत्रण कर सकेंगे, तभी तो बुद्धि को कोई विचार अच्छा लगेगा, या फिर जब विचार आ गया तब उसको अमल में लाने के लिए, इंद्रियों का विषय बनाने के लिए हमें खुद पर नियंत्रण करना पड़ता है।

इस श्लोक में कृष्ण सात्विक बुद्धि को समझा रहे हैं। जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का भेद समझाती है वो सात्विक है। प्रवृत्ति मार्ग यानी कि गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग देना और बुद्धि का केवल लोक शिक्षा के लिए इस्तेमाल करना, और निवृत्ति मार्ग होता है जब देहाभिमान को त्याग कर संसार से विरक्त हो बस परमात्मा को सोचते हुए विचरना। ज्यादातर ऋषि मुनि निवृत्ति मार्ग को ही अपनाए हुए हैं। इसी तरह से जो बुद्धि कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को असल में जानती है, उनके यथार्थ को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी कहलाती है।

जो बुद्धि धर्म और अधर्म भेद नहीं कर पाती वो बुद्धि राजसी कहलाती है। शास्त्र जिसके लिए हां कहते हैं वो धर्म होता है और जिसके लिए मना करते हैं वो अधर्म होता है। बुद्धि ही इन दोनों में फर्क बताती है और जो बुद्धि फर्क नहीं बता पाती, संदेह में रहती है, वो राजसी होती है। इसी तरह से राजसिक बुद्धि कर्तव्य और अकर्तव्य का भी अंतर नहीं जानती। जो बुद्धि आपको यह बता ही नहीं पाती कि आपका कर्म सही है या गलत, जो जीवन का कल्याण कर दे वही धर्म है, कर्तव्य है, और जो जीवन को बंधन में डाल दे वो अधर्म है, बुद्धि ही इन दोनों में भेद करती है और जो नहीं कर पाती वह बुद्धि राजसी है।

जो बुद्धि विपरीत करने की सलाह देती है, उल्टा करने को कहती है, वो तामसिक होती है। तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है। सात्विक बुद्धि यथार्थ को बताती है, मतलब सच को। राजसिक बुद्धि संदेह में रहती है, लेकिन जो तामसिक होती है वो बुद्धि सिर्फ उल्टा बताती है। ऐसी बुद्धि को विपरीत ज्ञान की गठरी भी कहते हैं दोस्तों। जब उल्टी बुद्धि या उससे हासिल उल्टे ज्ञान पर चलेंगे तो स्वाभाविक है कि कभी सही जगह पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। ऐसी बुद्धि का निष्कर्ष या अंजाम सिर्फ विपरीत ही होता है।

0: धृति वो होती है जिससे आप अपने निर्धारित लक्ष्य को अपनी आंखों से हटने नहीं देते, इसे ही धारणा शक्ति कहते हैं। श्री कृष्ण सात्विक धृति के बारे में बता रहे हैं। जो धारण शक्ति परमात्मा के सिवाय अन्य किसी भी सांसारिक यानी कि वर्ल्डली विषय को धारण नहीं करती, वह अव्याभिचारिणी धारणा मानी जाती है और इसीलिए सात्विक होती है। इसी सात्विक धृति से मनुष्य अपने ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है और अपने लक्ष्य पर पहुंचता है।
1: आदरणीय श्रोता, आजको लागि कार्यक्रम श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यति नै। नमस्ते।

0: मंगलम अब सबैको मंगलम अब घर घरमा मंगलम सबैको इच्छा पूरा गर्ने चामल मंगलम
1: जय श्री फुड्स प्राली द्वारा उत्पादित मंगलम जीरा मसिनो चामल मंगलम सोनम चामल मंगलम सोना स्टीम चामल स्वाद र सन्तुष्टिको लागि
2: सिल्वर प्यालेस विश्वसनीय सुरक्षित र भरपर्दो स्वदेशी श्रम र सिपबाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चांदी का एक्सक्लूसिव गहना लगायत भाड़ाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चांदी का सामानहरू को लागि सिल्वर प्यालेस न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता हरेक सामानमा 100% शुद्धता को ग्यारेन्टी दिने एकमात्र सिल्वर प्यालेस पसल नम्बर 15 विशाल बजार न्यू रोड एवं प्युखा न्यू रोड होलसेल तथा रिटेल सेवा।
3: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
4: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
3: त्यसैले शुद्धता नै खोजौ। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हीरा का आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन चाँदी तथा हीरा जे किन्नुस जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुस।
2: बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्टैंडर्ड चार्टर बैंक मुनि संपर्क नंबर 5320411 98020076888।
3: जेजे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान।
2: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: जे जे ज्वेलर्स के किन्नुस
1: बसंतपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्टैंडर्ड चार्टर बैंक मुनी संपर्क नंबर 5320411 9800
2: लागि उपयुक्त
3: स्कूल कलेज बाट एजुकेशन टूर में जाने विद्यार्थीहरु लगायत बोटानिकल संबंधी रुचि राख्नेहरुको लागि उत्कृष्ट स्थान
2: कैप्टेन रेग्मीज फार्म हाउस कमतान को बगैचा बेलकोटगढ़ी मदानपुर 12 देउराली
3: संपर्क नंबर
2: 9841470164
3: 9800 3245 54
2: 9849528781
0: FM अध्यात्म ज्योति शांति रेडियो

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: अनि मलाई

0: சாவேல் சுச்சேபாடி.
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकने.
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो.
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ.
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं. जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ. जेजे ज्वेलर्स. जेजे ज्वेलर्समा छ सुन, चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्सन. सुन, चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्.
4: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क मुनि. सम्पर्क नम्बर 5320 4111 98020 76888.
2: जे जे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान.

गए ये सारी दुनिया, अब अपना घर है, हार न मानेंगे ये खिलाड़ी। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े आकार।

सिल्भर प्यालेस विश्वसनीय सुरक्षित र भरपर्दो स्वदेशी श्रम र सिपबाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चाँदी का एक्सक्लुसिव गहना लगायत भाड़ाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो।
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले
3: शुद्धता नै खोजौं।
4: जेजे ज्वेलर्स
5: प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हीरा का आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन चाँदी तथा हीरा जे किन्नुस जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुस।
6: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि।
7: सम्पर्क नम्बर 5320411 9802076888।
5: जेजे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।
8: Four eight.

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।

0: हर दिल को किसी के क्या तोड़ेंगे फूल हमने तोड़ा।
1: हर पाया जिसे दिलों का दुश्मन उसे कभी ना छोड़ा।

0: ಸೋಷಿಯಲ್ ಸುಚ್ಚ ಪಾಠ
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

जमा हो चकाचक हिरलो पान चबाए। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जा।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: बोली त्यहाँ त फिल्म हेर्दाखेरि भोलि मारौ न
1: मिति गङ्गुदी मङ्स

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव हरुले मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क करना सक्नु हुने छ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं।
4: जेजे ज्वेलर्स
5: प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
6: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि।
7: सम्पर्क नम्बर 5320411 9802076888।
8: जे जे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान।

0: पैलेस सुप्रपत न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं।
4: जेजे ज्वेलर्स
0: प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्सन। सुन चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
5: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि।
6: सम्पर्क नम्बर 5320411 98020 76888।
0: जे जे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: पहिले यहाँ सुंदर उन्नता एफएम और ख्याम ज्योति ज्योति
1: अध्यात्म ज्योति अध्यात्म ज्योति।

सद्गुरु प्रवचन श्रृंखला अन्तर्गत एफएम अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ द आर्ट अफ लिभिङ को संयोजनमा श्री श्री रविशंकर जी को प्रवचन माला कार्यक्रम अमृत धारा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक श्री इन्वेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड।

0: नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ यहाँलाई द आर्ट अफ लिभिङको संयोजनमा सञ्चालित यो कार्यक्रम अमृत धारामा। अब हामी द आर्ट अफ लिभिङका प्रणेता श्री श्री रविशंकरज्यूको प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा आजको प्रवचन सुन्नेछौँ।
1: ये मंत्र जो है, ये आकाश में बोने वाली बीज, आप देखो जमीन में अन्न उपजता है ना, अन्न कैसे उपजता है, पहले हल चलाते हैं, फिर पानी देते हैं, फिर बीज बोते हैं, तब अन्न उपजता। ऐसे ही आकाश से आनंद का फसल उतरता है, पृथ्वी से अन्न उठता है तो आकाश से क्या मिलता है हमको, आनंद, खुशी, संतोष, शांति, प्रेम, ये सब इसका फसल आकाश में होता है। तो आकाश में बोते हैं बीज, इसलिए सब बीज मंत्र बोला जाता है। और जितने भी आप इस तरह से कवच पढ़ेंगे, हनुमान चालीस पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, ये सब पढ़ने से क्या अपना एक शक्ति बढ़ता है, उत्पन्न होता है। ध्यान करना, आकाश को में हल चलाना और सिंचन करना, फिर उसके ऊपर चैंटिंग करना, इस तरह से मंत्रों का उच्चारण से, जाप करने से वहाँ फसल उगती है। वो फसल क्या है, खुशी की, मस्ती की, आनंद की। जब भी लोग खुश होते हैं तो बोलते हैं कि ये तो, जब सफलता मिलती ना जीवन में, क्या बोलते हैं, ये तो हमारा पूर्वज का देन है। हमारे पूर्वजों ने कुछ पुण्य किया, उसका हम भोग रहे हैं, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, घर घर में बोलते हैं। जब भी हमें कोई सफलता मिलती है, उस सफलता का श्रेय किसको देते हैं, अपने पूर्वजों के परिश्रम के लिए देते हैं। जैसे किसान हल चला के फसल उगाता है तो बोलता है ये तो हमारे परंपरा से चला आ रहा है। अब देखो आज बीज, देशी बीज बचाने की बात हुई, कुछ लोग तो बचा के हुए आए हैं, तभी ना ये बीज है। बाकी देशों में इतने बीज है नहीं, वहाँ ओरिजिनल बीज तो है नहीं, लोग खत्म ही कर चुके। सिर्फ भारत में फिर भी हमने अपना बीजों को बचा के रखा और इसको और बचा के रखना है, ये संकल्प आज आपने लिया। तो एक तरह से हम अन्न का भी देख रहे हैं, दूसरी तरफ आनंद का भी देख रहे हैं। वेदों में कहा है, यो जागार तम रचक कामयन्ते, जो ध्यान करता है, जो जागता है भीतर से, उन्हीं के ओर मंत्र दौड़ते हैं। माने जहां पर जमीन अच्छा है वहां बीज अंकुर फूट सकती है, नहीं तो नहीं होता। पत्थरों के ऊपर बीज डालो कहां आएगी। इसलिए कई बार हम सिर्फ मंत्र बोलते रहते हैं, उसका कोई फल ही नहीं मिलता। कई बार पूजा में बैठते, पूजा ऐसे ऐसे फूल फेंकते रहते हैं, मन कहीं और भागता है। पूजा करके उठने के बाद भी गुस्सा, पूजा से पहले भी गुस्सा, ऐसे ही ऐसे रहते। सही है कि नहीं, बताओ कितने लोगों ने ऐसा देखा। कुछ तो असर है, मगर उसका असर पूरी तरह से उतारना हो जीवन में तो हमें ध्यान करना आवश्यक है, प्राणायाम करना आवश्यक है। प्राणायाम करने से जो भी मल आवरण विक्षेप मन को घेर चुका है वो कम होने लगता है। फिर ध्यान करोगे तो आकाश तैयार होता है बीज बोने के, फिर वहां जो भी अपनी इच्छा है वहां समर्पण कर दो, आकाश को समर्पण कर दें, तब वो फलीभूत होगी, होगा ही है, होता ही है। भगवान कैसे हैं, मूर्ति तो हम वैसे रखते हैं, भगवान कैसे हैं? आकाशवत, कैसे? चिदाकाश। भगवान शिव को चिदाकाश माकाश रूपम परेशम।

जगह व्यापक जो सत्ता है, चैतन्य सत्ता है, वही ईश्वर सत्ता है। वो हमारे भीतर भी है। यदि ईश्वर सब जगह है, यहाँ है कि नहीं? अभी कहीं सिर्फ बद्रीनाथ में बैठे हैं क्या? नहीं, सब जगह है, यहाँ है, अभी है, मुझ में है। यह निश्चय, ये ज्ञान हमारे भीतर उदय हो जाए, यही ज्ञान गंगा। इस ज्ञान गंगा में नहाते हो तो 68 तीर्थ यही हैं। गुरु के पास आते हैं तो बस यही उस

0: पाता है। पूरा शहर में एक उत्साह उत्सव है, हर जगह एक पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा जाग जाती है। नवरात्रि आती है, कुछ ऊर्जा का अनुभव करते हैं हम माँ की आराधना करते हुए। ऐसे ही दिन भर दिन हम इस चीज को ध्यान दें कि हमारे जीवन में सफलता का कारण सत्वगुण की वृद्धि के वजह से। असफलता मिल रही है तो सत्वगुण कहीं दब गया, कम हो गया, फिर उसको बढ़ा। सफलता मिल रही हो तो इतना धन्यभागी होते रहो, वो सफलता और बढ़ता जाए। हाँ, अभी यहाँ पर आज तो तीन तीन ज्ञान क्षेत्र की बातें हुई। ज्ञान क्षेत्र किसके लिए? हमारे लिए क्या? नहीं, आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए। ज्ञान क्षेत्र इसीलिए, वहाँ आप जाओगे, बैठोगे, थोड़ी देर ध्यान करोगे, अपनी दर्द दुख इच्छाएं सब वहाँ समर्पण करोगे और वहाँ से निकलोगे तो बड़े मस्त होकर के, प्रसन्न होकर के, आनंद से अपना जीवन बिताओ। जीवन आनंदमय है, इसका अनुभूति होना हो तो हमें एक तो अन्न, दूसरा आनंद, वो ध्यान, ये दोनों आवश्यक। कितने देश है दुनिया में, वहां पर सब कुछ होते हुए भी लोग दुखी हैं, आपको पता है? अमेरिका जैसे देश में 4 लोगों में से 1 आदमी डिप्रेस्ड है। हर 40 मिनट में एक आदमी खुदकुश, हर 40 सेकेंड में एक आदमी अपने आप पर प्रहार करता, खुदकुशी कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। क्या फायदा सब कुछ संपत्ति होने के बाद भी जीवन में आनंद नहीं हो, आकाश सूख गया हो, क्या फायदा? भारत में फिर भी हमने ये सब बचा के आए हैं सदियों से, इसलिए यहाँ इस धरती में वो बात है जिसको हमें खोने नहीं देना चाहिए। क्या क्या ख्याल है? ठीक है ना? हर व्यक्ति को गीता पढ़ना चाहिए एक बार, साल में एक बार, पूरा 700 श्लोक है, पढ़ो। 10-15 दिन लगेगा, जितने दिन लगे पढ़े। ऐसे योग वशिष्ठ है, भगवान श्री राम को महर्षि वशिष्ठ ने उपदेश दिया है, उसमें यही बोला, हे राम, तुम आकाश जैसे हो। राम की जीवन तो लीलामय है, राम भी एक बार ऐसे ही थोड़ा उदास हो गए थे, उनको कुछ अच्छा नहीं लगा जीवन में, तब गुरु के पास आना पड़ा। अब होते भगवान, आप मुझे बताओ मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तब वशिष्ठ महर्षि जी ने श्री रामचंद्र जी को उपदेश दिया, वो उसी को कहते योग वशिष्ठ। कितने लोगों ने पहली बार सुन रहे योग वशिष्ठ का नाम, हाथ उठाइए, हाथ उठा, कितने लोगों को पता नहीं था। हाँ, फिर भगवान राम को अब आत्मज्ञान कराते हैं उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ। इस ग्रंथ के आधार पर कई मूवीज बन गए, सिनेमा बन गया अमेरिका में, ये मैट्रिक्स वगैरह बोलते हैं ना, ये सब इसमें से नहीं है। इंसेप्शन, मैट्रिक्स, इस तरह से जो जो बहुत नाम हुआ है, जो जो सिनेमा को, चलनचित्र, ये सब इसका आधार था योग वशिष्ठ। ऐसी ऐसी चीजें हमारे देश में हैं, इन चीजों को हमें रखना चाहिए। भारत के एक स्वामी जी ने इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया और सभी पब्लिशर के पास गए, अंग्रेजी में अनुवाद किया, और कोई भी पब्लिशर उसको लेने के लिए तैयार नहीं हुए। बोले इसको कैसे बिकेगा, तो बिकेगा ही नहीं। फिर वो न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने उसको देखा, अरे ये तो खजाना है। उन्होंने उस किताब को वहां पब्लिश किया, न्यूयॉर्क में पब्लिश किया। हमारे यहाँ पर भी हिंदी का अनुवाद है, बहुत सुंदर है। आप योग वशिष्ठ को आप सबको पढ़ना चाहिए, घर में रखना चाहिए, जब भी मौका मिले दो चार। अपना आर्ट ऑफ लिविंग में एक बनाया है सीडी, उसमें बहुत सरल भाषा में हिंदी में उसका अनुवाद है। उसको लगा के सोते वक्त उसको लगा के सो जाओ और उठ के उसको सुनो, कहीं ट्रैवल करते हो सुनो। इसका बहुत अपना ऐप में भी होगा, ये आर्ट ऑफ लिविंग ऐप है ना, उसमें डाउनलोड करके उसमें से ले लेना। ऐसा आपकी चेतना इसमें खिलने लगेगी, बता नहीं सकते, इतना सुंदर है ज्ञान। हमारे यहाँ ज्ञान की गंगा बह रही है, मगर हम इस पर इसको कदर नहीं कर रहे। ये समय आ गया, या नासिक में आप लोगों ने शुरू किया ज्ञान गंगा, आपसे ये इस प्रवाह को निरंतर बहने देंगे। होगा वो, ऐसे होगा, होने वाला है। अच्छा, अब रही बात राम मंदिर की। हाँ, जब राम मंदिर के केस थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हमको कहा, गुरुदेव आपको इसमें रहना है। हमने कहा, ना मैं लायर हूँ, ना मुझे इससे कुछ पता है, आपको जो भी मदद चाहिए मैं बाहर से दूंगा। नहीं, वो बोले नहीं नहीं आपको रहना पड़ेगा, आप सुप्रीम कोर्ट कह रही है ये राम जी का काम है। हमने कहा हाँ ठीक है, फिर आप इंसिस्ट करते तो मैं रहूँ। फिर उन्होंने बताया, देखिए ये 18 बॉक्स है, इतने बड़े बड़े बॉक्स, यदि मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को लगाऊं, 2 साल लगेंगे इसको स्टडी करने में, बाकी सब काम ठप हो जाए, सिर्फ इसी पर लगाए 2 साल लगेगा इसको पढ़ने में। आप एक काम करिए, आप इसको थोड़ा देख करके, 25 पार्टीज है, इन पार्टीज को आप मीडिएशन कुछ केंद्र बिंदु पर ले जाइए, फिर आगे से हम काम ले लेंगे उसको। तो हमने कहा ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है, हम लोग अयोध्या में बैठते थे, हमारे साथ 2 और जज थे। यदि आगे कोई फिल्म बनाएगा तो वो इतना मजेदार रहेगा, इतना हंसी मजाक उसमें मिलेगी, इतना हास्य। वो फिर हम 8 महीने तक लगातार रोज बैठते रहे, सुनते रहे हर पार्टी को, रोज 8-8, 10-10 घंटे। इसके अलावा, इसके बाहर हमने करीब 1200 इमामों से मिले और उन सबको बात करी, मनाया, मनवाया। फिर उन लोगों ने सब ने दस्तखत करके दिया, हम राजी हैं। हम भी जानते हैं श्री रामचंद्र जी हमारे भी पूर्वज है, हमको बहुत हमारे मन में सम्मान है, हम भी जानते हैं, हम भी तैयार हैं। फिर आप जानते हैं, उन लोगों ने कहा कि समय कम हुआ, हम ऑलमोस्ट डिसीशन में आ गए। फिर उन लोगों ने कहा राजी हो गए, तो 2003 में हमने जो फार्मूला दिया था, 5-6 एकड़ उनके लिए पंचकोशी क्षेत्र के बाहर देंगे, मस्जिद वहाँ बनेगा, इधर मंदिर बनेगी, सब शांति से निपट जाएगा। इस बात पर लोग राजी हुए और उसके बाद कोर्ट ने उसको लेके अच्छे से जजमेंट दे दिए। और देखिए उसके बाद कोई हरकत नहीं हुआ, कोई दंगा फसाद कुछ नहीं हुआ, शांति रही ना शांति। कुछ लोग तो बोलने लगे अरे अरे ये अभी शुरू ही नहीं होता, ये मीडिएशन मेडिकल ये सब कुछ नहीं, ये सब फेल हो गया, फेल हो गया। कहाँ फेल हुआ, फेल तो होता ही नहीं है मेडिएशन का। समझ, लोगों में समझ पैदा करना ही मीडिएशन है कि नहीं। घर पे दो आदमी के भीतर झगड़ा होता है तो एक दूसरे से बात करो, समझाओ, समझ करके आगे बढ़ ही जाते हैं। तो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हमारे भारत सरकार को बहुत शुक्रिया देना चाहिए भारत सरकार के प्रयत्न से। भारत के सारे तीर्थ क्षेत्र, मोदी जी ने इतना अच्छा काशी विश्वनाथ को किया, अभी राम मंदिर और केदारनाथ, इस तरह से देश की महाकाल, ये सब जगह ऐसे नेग्लेक्टेड थे, माने इसको किसी ने देखा नहीं था। और यहाँ पर भी नासिक में भी इतना अच्छा सड़कें बन गई, सब बन गया, घाट बन गया। धर्म भीरू होने से ये होता है, और ये काम हुआ है भारत सरकार को। इस तरह से धार्मिक क्षेत्रों की अभिवृद्धि करने के लिए बहुत बधाई देना चाहिए। देवाश्रय और राजाश्रय दो चीज होते हैं। राजाश्रय से धर्म पलपता है, दैवाश्रय से जीवन में उत्थान होता है। अब हम दैवाश्रय के लिए तो ये सब करते हैं, दैव पर आश्रित रहना, तब जीवन में कभी दुख नहीं होगा। क्या हमारे तो कोई है, हमारे गुरुदेव है, हमारे कोई है, ये भाव हमारे भीतर होता है तो कभी हम मुरझा नहीं जा सकते, कभी उदास नहीं हो सकते। इस तरह से जीवन में एक नया सुगंध आए उसके लिए सबको काम करना पड़ेगा, है ना। हाँ, घर घर ध्यान होना चाहिए, हर घर में लोग ध्यान करेंगे तो मन प्रसन्न रहे। राम का अर्थ ही यही है, राम अने रश्मि, जिसे अंग्रेजी में रेस बोलते हैं, रश्मि रेस। देखो 70% अंग्रेजी भाषा संस्कृत से भरा हुआ है, आपने कभी सोचा? कितने लोग नहीं सोचे, हाथ उठाए, कितने लोगों को नहीं पता था, हाथ उठाइए। अच्छा, हाथ संस्कृत है ना, अंग्रेजी में क्या, हैंड है ना, नोस संस्कृत में क्या है, नासिका, नोस, डेंट दंत। इस तरह से हृदय हार्ट, आप पाओगे ये भाषा जो अंग्रेजी भाषा है ये पूरा पूरा संस्कृत लिया हुआ है, मगर हम खुद ही इस पर इस बात को नहीं बताते तो औरों को कैसे पता चलेगा, बाकी लोग एक्नॉलेज नहीं करते इस बात को। जैसे महीनों का नाम है, ये सब महीनों का नाम संस्कृत में है, आपको पता है नहीं पता, कितने लोगों को नहीं पता, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, देखते हैं, संकोच नहीं करना, हाथ। अच्छा, कितने लोगों को पता है, हाथ उठाओ, आपने सुना होगा हमसे। दश अंबर माने दसवीं आकाश, नव अंबर नौवीं आकाश, अष्टम्बर अक्टूबर आठवीं आकाश आठवीं महीने, सप्तम्बर सातवीं महीने, फाल्गुन फरवरी, ये फाल्गुन है, फरवरी फाल्गुन है ना, अभी तो नया साल मार्च में गुड़ी पड़वा के दिन ही शुरू होता है। पूरी दुनिया में एक समय था जब नया साल मार्च में करते थे, मगर अभी 500 साल पहले एक अंग्रेजी राजा को लगा नहीं जनवरी से नया साल शुरू होना चाहिए, मार्च में नहीं, तो उसने बदला मगर लोग माने नहीं। तब जो फिर भी करते थे उनको उनको खोसने के लिए उन्होंने फूल्स डे किया अप्रैल 1।
1: आदरणीय श्रोता, आजको लागि द आर्ट अफ लिभिङको संयोजनमा सञ्चालित यो कार्यक्रम अमृतधारा यति नै।

0: मन शांति आराधना र उपहार का लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास
2: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने
3: तपाईं अहिले सुनिरहनु भएको छ FM अध्यात्म ज्योति।